हाँ जी, तो चलो फिर अज इत आप हूँ इस शो न रैपअप करते हैं। अज तो साढ़े फाइनल मैसेज थानू कि रस्ता किन्ना भी लम्मा हो, जदों इंसान पहला कदम लै लेंदा तो मज़ा